जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय चढ़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न हुई। बलिहारी

अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालेओ, जिन कीती सो पार पया।

तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखीसर जुग जुग वेदा नाले

अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा

विचारा सिफति भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिस क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखन औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माई, साचा साहिब साचै नाई। रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न हुवै घाट न जाए। ना उह मरै न हुवै सोग, देदा रहै न चूकै भूख।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हारु हारु हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उत्तम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ता कारज को आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक सुंबाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया। ऊडे ऊडा वै सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए।

क्या गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावह है हर त्यावह तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्या

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू वेको जी, तू निचल करता सोई। तुदे

कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरडै पहिले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया, रहाउ ना हौ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा।

भेव न पावत बेदा ताकौ कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही कूपा अंडज जे रज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिदरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे गुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तू संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मैं हरिहु रित सिद्ध कर्मु सब होई दुष्ट चाह छव सकै न कोई।

सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सुवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असुपान कृपा तुमरी, कर मैं न कहूँ, सब तो हे बकान्यो। दो हरा सगल

सत्संगे जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहेगुरु अधिपाची दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिरंकित गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण के आए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है करना उन्हें दयावटाए सब थाई हुए सहाय दसवें पाशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसम पाशी के पुत्र आत्मन स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदास दत्ते अंतर के घर सत्य बोलो जी वाहे। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपिया जिन्हें नाम जपया वन चकिया दे चलाई ते वाहे देख निड़कीता जना प्यार से प्यार नहीं कवाई दत्ते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाइया चरखड़ियां चढ़े यार ने चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा की गुरबाणियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी दिखे सत्संग दिखाया ते ना ही कमाई दा चांदर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा चांदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है जित अमृका सदका सर सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह की पाए पंत की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान क्योंकि चंडे मुंगे जुग जुगा टल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखांदा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहायार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की राहत सेवा संभाल सदा अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु न्यासियां आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार दियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास हे गुरु राज जी आपके चरण का अरदास तार जी आपके चरण बख्शी हुई आपने कृपा की है आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमनी साहब के पाठ दिता है इस वे संध्या।

सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी तेरा कीता जातो नहीं मैनो योग कीतोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाहीं आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया

एहो धन करते का खेल है। कदे आवे कदे जाए, ज्ञानिया का धन नाम है। साध ही रह समाए, एहो नानक जिनको नजर करे, ता एहो धन पल्ले पाए। ज्ञानिया का धन नाम है,

जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख उठ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हरला आगे बसन सुहेला, औद कटै दिन सुर नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पिया वह एहो रस कथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहा जो हर गुर ते मने बसेरा,

बोलो जी प्रदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जय जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दर जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी निमाणिया दे मान मिताणिया दे तां नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सचे पातशाह जी महाराज जी अमृत वेले तो आप जिया ने खुले दर्शन दर दे के निहाल कीता है चार पहर दिन सुखां दा आप जी दे पाने बतीत होया महाराज जी आप जी दे पाने अंदर बतीत होया गुरु गरीब नवाज रहण आई है सुखमय बतीत कर महाराज जी रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल सोहला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया गुरु गरीब नवाज सेवकां पासों बेंत भुलां हो जांदियां ने बख्श लैणा बेंत संगतां तन मन धन करके हाजरियां भर रहियां ने सब दी हाजरी कबूल करना महाराज जी सेवादार हाजर ने निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सर्व सुख पाव है मेरे मना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया की पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही संगता दे योग हो। सतगुरु जी ने कृपा कीती है, अमृत वेले दियां हाजरियां बख्शिश कीतियां। सतगुरु जी ने पावन तख्तां ते प्रकाश मन हो करके जो हुक्मनामे दियां दातां बख्शिश कीतियां ने, राग तनासरी दे विच चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दी पावन रसना तो उच्चारण कीता होया ए पावन शब्द। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 669 और 617 दे उते सुभाए मान है जी। सतगुरु जी रहमत करन, इना पावन हुक्मां अनुसार सानू सारयां नू ही जीवन जाच बख्शदे होए इस जीवन नू सफलिया कर देण, ता जो लोक सुखी परलोक भी सुहेला हो सके। सतगुरु जी रहमत करन सभना जीआं दीआं।

या सब सतु आपे जाने अपनी में तो गत जिसकी श्रेष्ठ सो करने हारो अवर न बूझ करत विचारु करते की मित न जाने किया नानक ज्योत सुभावै सो वर्तिया बेसमन बेसम भय बेसमाद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे कोई दाते दुख काटन हार जा कै संग करे संसार जन का सेवक सुवट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगादि सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखण हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सब तारी आपे गुणकारी सबद सत सत प्रभ बकता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरू हृदय जिन मानिया करण करावण तिन मूल पछानिया जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई बूझै बूजन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जन है संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक ही राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभ तारा नानक सो सेवक सास सास सुमारा है अपने जन का परदा ठाक है अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास कहो दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक ही आप पात राखे ताकि गत मित कोई न लाख है प्रभ के सेवक कहो को न पहुचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया निकी किरी मैं काल राख है भाषम कर लस्कर कोट लाख है जिसका शासन काटत आप ताको राखत देख रहात मानस जतन करत बहु भांत तिसके कर तब बिरथे जात मारे न रखे अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कराय रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वेडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत एहो मान तन त्रपी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किशे अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जान त्रिपताने पूर्ण मंत्र नामे नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जिह भग न रात प्रभ अपने जन कीनी दात करै भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने सो रहे सुमाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पह प्रभ से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जान दे जिन जान अपना प्रभु पछाता सो जान सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पाव है तिसके दरस सब पाप मिटाव है अवर स्यान पसगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजा हो साद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिस का नाऊ तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाऊ अष्टपदी सतगुरु सिख की करै प्रतपाल सेवक पौ गुर सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिख के बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै सतगुरु सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी हे सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारै गुरु के ग्रह सेवक जोरा है गुरु की आज्ञा मन में सहै आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद तिहावै मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत होए नेह कामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसो आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
बीस बिसवे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुर।

जिस हृदय हर नाव अनक बार गुर को बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म एक आप नहीं कश भरम। सहस्यण पलै न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुनकर बचन करण आघाने मन संतोख आत्म पति आने। पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। जी बाएक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक। काहू बोल ना पौचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किन ना पाई। अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरै। सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद है सब प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमृत सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण तास। आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तप्त माहे ठांड वरताई आनंद पहया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चुका निर्भव होए बसे सगल ब्याद मन पे खै नसे। जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी। तेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए सर बिन रंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगास साध कै संग। राच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी। सलोक साथ ना चालै बिन भजन बिख्या सगली शार। हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल रिद में उतारो। करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ। कीर्तन संचो हो बो भगवंत संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखू मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कोंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत। जिस सोभा को करह भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी। अनको पावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्ब निधान मै हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान। मन प्रबोधो हर कै नाए दह देस धावत आवै ठाए। ताको बिघन लागै कोए जाकै हृदय बसै हर सोए। काल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन सह पूर्ण होए आसु भगत पहै आत्म प्रगासु। तित कर जाए बसै अभिनासी कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा। आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरण गुरु देव। इयो रत्न जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनको पावना छूटन हारे सिमरत सासत वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। सांग न जालत तेरे तना तू क्या लपटा वै मूर्ख मना। सुत मीत कुटुंब अरबनता इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया बिस्थार इनते कहो हो कवन छुटकार। आसो हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम बिसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह एने भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपहो अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत कत पावहो। सार भूत सत हर को नाओ सह सुबाय नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतर सुमैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल। हो हे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल। शाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच तना।
ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਬਿਵਹਾਰ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਾਹ ਜੈਕਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖੋ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ, ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਆਰਾਧ ਪਰਾਸ਼ਤ ਗਏ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਥਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਤੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਸਰਧਾ ਪੂਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਵੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ, ਸੁਭਾਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਬੜਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਇਆ, ਐਸ਼ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਪਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੋ ਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਿਹਾਇਆ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੋ ਏ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪਹੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ, ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੋ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦ ਨਾਮ, ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਗਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ, ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਭਵੇ ਸੰਗ, ਏਕ ਬਸਤ ਦੀ ਜੈ ਕਰ ਮਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਹਾਈ, ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਏਕਾਸ਼ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ, ਜਬ ਤਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ, ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਣ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਤਬ ਹਰਕ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿ ਸਹਿ ਵਿਆਪਤ, ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ, ਆਪਨ ਫਿਰ ਆਪ ਵਰ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ, ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੇ, ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੁ ਗਨੀ, ਜਬ ਏਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕਉ ਨ ਉਤਾਰ, ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤਬ ਸੇਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ, ਆਪਨ ਚਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ।
अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो केस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो पीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै तह किसै भूख कवन तृपतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपने शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्प कला आपे ही प्रवीण तह वेद कतेब कहा को चीन जब आपन आप उरतारे तव सगन आप सगन कहा बिचारे जह आपन ऊच आपन आप मेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्मर हे बिस्माद नानक अपने गात जानो आप जह अशाल अशेद अपेद समाया ऊहा कसै व्यापत माया आपस को आपे ही आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जह आप्रच्यो प्रपंच आकार तेहो गुण मै कीनो बिस्तार पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान अपन खेल आप कर देख खेल संकोच है तो नानक एक है जह अवगत भगत तह आप जय पसरे पसार संत परताप दोहु पाख का आपे तने उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौतक करे आनंद जोज आपे रास भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एको आप बिस्थार जत सुभावै तां सृष्ट उपाए अपने पाणे लै समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब तक है हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे तिस तज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी के जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो व्याप प्रत पालै जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसे तिहात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत कर हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए तिस की आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सोहेले नानक हर प्रभु आपे मिले
साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावहु प्रभ परमानंद। राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देह का करहु उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का इह सुआओ। आठ पहर प्रभ भेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसय अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावह, मन इच्छे नानक फल पावह। हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर तार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिखिया। मन तन नाम जपहो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। साच वापार करो वापारी, दरगह निब है खेप तुम्हारी। एका टेकर को मन माहे, नानक बहुर न आव वह जाए। तिस ते दूर कहाँ को जाए, उबर राखन हार ते आए। निर्भव जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई ना पौचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा।

अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट न आवत काल अमर भये अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमोलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरै दुख है निसतार

सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरे तिनके साथे प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवै आवन जान हर तन खाट चलाए जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल

नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कुए, सब जुग मैं ताकी गत हुए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हरे नाम, गोबिंद भगत कै मन बिसराम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाकै मस्तक करम प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन

सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सोई क्यों करे आखा क्यों सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुवै नानक जी को आपौ जाने कह गया न सू है पाताला पाता लख आगासा आगास कोड़ कोड़ पाल थके वेद कहनिक वात सहस अठारह कैनक ते बासलू एक तात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डाया की है आपे जान है आप सालाही ती सुरत न पाइया नदियां अतै वाह पवह समुद न जानी है समुद शाह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना हुवनी जे तिस मनु न विसरहे अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत्र अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पार अवार अंत कारण कीते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे ओ अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा सा

राज राजेशं परम रूपे नमो जोग जोगेशं परम सिद्धे नमो राज राजेशं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेशं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवेशु धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो साहसांग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग सुनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अछिदीय पेदीयनामंगकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जो चाचरी चांद जले

वादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्नाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अकीजे अपिजे समस्तं प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मी अमृत धर्मी अकल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काली सर्वंग पाले रुआ चंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौनपुर कपार सर्वान त्रिमान देव पीवाद उदार सर्वपाल सर्व काल सर्व कूपन काल जतर ततर विराज अवतूत रूप विशाल नाम थाम न जा जाक रूप रंग नरेक आद पुरख उदार मूर्त जौन आद शेख दिशोर न पेश जाक रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हो फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखता मुह न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक दे पे न जाने ही जे वेद और कते रूप रंग न जात पात सो जानी के जे तात मात न जा चक्र जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतुर चक मानी पूर्ति लोक चौदह के बिखै जग जा पीजे जा पा देवनाद मूरत था प्यो सबै जी था परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचे सोयम भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अभे संग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम आप रूपमी कनुष्ट देख प्रकृतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग हीन भंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन पांग उपमा नंगन पौ प्रकाश निश्चिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजन राज पानन पान देवन देव मा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन भूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार गुणगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड वालिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडन भाड्य चाचरी छंत्व प्रसाद गोविंदे

उदारी हरियं करियं निर्णामेय कामे पुजं प्रयाचन चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग जाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सदिश अदृश्य कृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते किया चिज देश किया भिज पिस किया गंज कर मैं किया पंज भर मैं किया भिज लुक है किया दित सुख है के भूत भरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि अशोक भरने के सर्वा अपर्ण कि जगतं कृति है कि छत्रं क्षत्रिय के भरमंग स्वरूप है कि अनुपाव अनुप है कि आदि देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रहीम में रिहा के पाप वैब है कि गै भुल गैब है कि फुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राज करीम है कि कर्म करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिस है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमंग फहीम है कि आकुल अलम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तुमामुल रजू है हमेशल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तुमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय की यकीन है नेकुल तुरंग है अपीद है अपंग है अजीजुल निवाज हैं गनी मुल्क राज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं सुयुक्त सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभिधी अनूप हैं समस्तु पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैव अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंगाद रूप हैं अनाध स्वरूप हैं अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिभर्गं त्रिभाते अगंजी अगाते शुभं सर्वभागी सुसर्वानुरागी त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकं प्रनाश है पृथुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद भंग है अनंग है अपेख है अलेख है भरम है कर्म है अनाद है जुगाद है जय है अभय है भूत है तूत है अनाश है उदास है धंध है बंध है भक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है लिख है देखे लेख है भेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है नित्य है सुनित है आजाद है आजाद है चरपड़ छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता सावल छंद प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं प्रमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरी कै मितो अमी कै सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद प्रसाद जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामिल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है गंजुल गनी मह रजायक रही मैं समस्तुल जुबा है कि साहिब किराए
कि नरकं प्रणास है वह सुल निवास है कि सर्वल गवन है हम इसलरवन है तुमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशल आलेख है हमेशल अपेक है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि सुरत जुमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपांग है मद पार छंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरवर अगंज हर नर पर पंज अनुगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड पर नर अमंड अन पवनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अंचे जीव अंग आसन अपांग उपमा पार गित उदार जल थल अमंड दिश विश अपांड जल थल महंत दिश विश बेअंत अन पवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाद कालखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गात अज जना बात अन चंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन डट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अनब्रण अनंत दाता महंत हर गोल मना चंतवा प्रसाद करुणालय है हर काल्य है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व भारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है थपा तप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है कलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निर्पनायक है सर्पायक है भाव भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्य।

नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासासे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चांदा जय अलय अभय अभय अपू अजू अनाश अकाश गंज पांच लख पक अकाल दयाल रेख भेख नाम काम गाह अटाह नाथे परमाथे अजूनी अमोनी नरागि नरंगे नरूपे नरेखे करमंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विघ्नि में हरियं करियं करिमुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा।

के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक्यो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर से चित लाया हे नित्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया यो भी संसार तुम देख देव हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरु प्रसादी बुझिया जावे का हर एक है हर बिनवर न कोई कह नानके नितरंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे श्रवण हो मेरे हो सच है सुन नैनो पठाए सच है सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जिस सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रसमानी सचल कविडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हुवो सच है सुन नैनो पठाए हर जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पाओ नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरु द्वारे लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नव निध तिष्टांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहिला साचै कर गावहू गावु ता सोहिला कर साचै जिथै सदा सच त्यावहे सचो त्यावहै जा सुध भावै गुरमुख जिना बुझावहे इहो सत सबना का खसमै जिस बख्से सो जन पावहे कह नानक सच सोहिला साचै कर गावहे।

पूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेली, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गुले।

हालत पालत मुख उजल हुई है। नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ, जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी।

तनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा गुरु बख्शिश का सदका अमृत वेले गुरु चरणा की हाजरी भर के सतगुरु जी दियां रहमतां प्रदान कर रहे हो। गुरुदेव जी ने कृपा की है पावन गुरु चरणा विच बैठ के आप जी अमृतमई गुरबाणी के पाठ उपरंत अरदास हुक्मनामा साहब आप जी ने सरवण किया है। धन गुरु रामदास होडी सुल्तान सतगुरु जी ने अज के पावन श्री मुखवाक बख्शिश किए हैं। तनासरी राग अंदर सतगुरां के पवित्र अंग 669 70 उपर पावन शब्द दर्ज है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं कि जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल हुई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। कि हे मेरे मना, जिस वाहगुरु परमात्मा परमेश्वर के नाम नू तू सदा जपता रहेगा, आराधदा रहेगा, सिमरदा रहेगा, कि हलत पलत अंदर भाव लोक परलोक विच तेरा मुख उज्जल होएगा, तेरा मुख पवित्र होएगा, पत वाला होएगा। क्योंकि हरि दा नाम उस काम तेन गौवर का है जिदे पासों जो मंगी वह प्राप्त हो जाता है, उस कल्प रुख वर्गा है जिदे पासों हर कुछ कल्पीय प्राप्त हो जाता है। जिन्ना भी गुरु चरण पकड़ के उस अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम गुरु पासों लै करके उसनों अपने जीवन का मंत्र जीवन का आधार बना लिया है, लोक ते परलोक सदा उन्हां दी सतगुर का नाम मदद करता है। जह हर सिमरन भया तह उपाध गत की, जिथे वड्डियां वड्डियां उपाधियां उपाधियां का भाव इत्थे है, दुख कलेश संकट होण जिथे भी इहो जिहा समा बनिया होवे ते हरि का सिमरन उत्थे हो जाए, उत्थों ओ दुख संकट कलेश पाप अगाध गत भाव की दौड़ जाते हैं, भज जाते हैं। यह हरि दे सिमरन की बरकत है। गुरु साहब कृपा करन दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करके नवाजन। आओ अमृत बाणी आसा की वार के कीर्तन नाल जुड़िए। भाई रिशपाल सिंह जी और उन्होंने जत्था आप जी ने गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ेगा जी। भुला चुका की खिमा समूह संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

जीवराज अंतरज में सतगुरु जी आप जी दरदी हाजिर पढ़द्या बेअंत कृषिक माई पाई वालों आप जी के मन की सत्कार जो बेअंत माया बेटा कर दिया सारों सिखी दान भरोसा दान चरना कमला प्यार बख्शना खजाने भरपुर कने सुपाओ गुरु प्यारी सतसंग जी कीर्तन की इनक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका दिखी अगले प्रोग्राम सरवण करिए सत्कार योग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी और उन्होंने पासों अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

सत्संगति। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई प्याय पहले अंकित गुरु ते अमरदास रामदास जी हमेशा।

शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई। आपे वेखै सुने आप गुर शब्द ते आई,

पौड़ी वेकी सृष्ट उपायन सब हुक्म आवै जाय समाही आपे वेख विगसदा दूजा को नाही ज्यो भावै त्यो रख तू गुर शब्द बुझाही सबना तेरा जोर है ज्यो भावै तिवै चलाही तुद जीवन मैं नाहि को किसे आख सुनाई। श्लोक महला तीजा।

बक्षेऊन अस्थिर हर सती पौन पाणी बैसंतरो हुक्म करह भगती इना नो पौ अगला पूरी बणत बणती सब इको।

मन का झूठा झूठ कमावै, माया नु फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी।

तिसका पूजन नानका विरला पाए को। महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन जे पार घर पूजन करेन उदरै कारण अपने पहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सहो अपना निज घर रहन करेन। पौड़ी अंबर धरत बिछोड़ेन विच सच्चा असराउ घर दार सबो सच है जिस विच सच्चा नाउ। सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाऊ सच्चा आप तख्त सच्चा

अपने बहुती लहै सजाए, रह नायर में सब किछ है करमी पल्लै पाई। नानक नौ निद पाई है जी चलै तिसै रजाई। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवे ओ विच होमै जन्म विनाश। रसना हर रस न चखियो कमल न होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ माया मोहे विनाश। इक सहर के नाम विन त्रिग जी

सबो रत है, रत बिन तन न होए। जो सहर ते अपने तिन तन लोभ रत न होए। पै पै तन खीन होए, लोभ रत विच हो जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भाओ दुरमत मैल गवाए।

दुख सहाय। नानक गुरमुख उभरे सच्चै शब्द समाहे। पौड़ी आप अलिपत सदा रह, और तंदै सब तावह। आप निश्चल अचल है, और आवह जावह। सदा सदा हर त्याई है, गुरमुख सुख पावह। निज घर वासा पाई है, सच सिप्त समावह। सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई।

सो फल पाए सच। कथनी बदनी करता फिरै, हुक्म न बुझै बुझै सच। नानक हर का भाणा मन्ने, सो भगत होए विण मन्ने कच निकच। महला तीजा, मन मुख

होमै जाइए रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मिलाई है घट अंतर अमृत रखियो गुरमुख किसै प्याई श्लोक महला तीजा।

आप। औ हठ पट्टन मह भिखिया करै, सो औ दूती शिवपुर चढ़ै। बोलै गोरख सत स्वरूप, परम तंत मै रेक न रूप। महला पहला, सो उदासी जे पाले उदास। अर्ध उर्द करे निरंजन वास, चंद सूरज की पाए गंड। तिस उदासी का पड़े न कंद। बोलै गोपी चंद सत स्वरूप, परम तंत मैं रेक न रूप। महला पहला, सो पाखंडी जे काया पखाले। काया की अग्न ब्रह्म पर जाले, सुपने बिंद न दे चरना। तिस पाखंडी जरा न मरना। बोलै चरपट सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप। महला पहला, सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म। गगन मंडल मह रूप थम, अहनिस अंतर रहत यान। ते बैरागी सत समान। बोलै परथर सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप। महला पहला,

मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना, हेत कमाणे सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवै खूहे त्यो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप तो रहना। हर नाम जपै, हर नाम जपै आप उद्धरै, उस पिछे डुबदे।

काया कूट है दसवें गुप्त रखी जय। बज्र कपाट न खुलनी गुरु शब्द खुली जय। अनहद बाजे धुन बज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित घट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब मैं एक वरतदा जिने आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा। अंधे कह राहे दसै अंधा हुए सुजाए। हुए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह नाया कियन जिन मुख लोयन नाहे। अंधे से नानका खस मोह कुत्थे जाहि। महला दूजा। साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा हुए। जेहा जाने ते हो वरतै जे सो आखै कोए। जिथै सुवस्त न जापई आपे वरतौ जान। नानक गाहक क्यों लय सकै न वस्त।

काम क्रोध दोए खेत लब वत्र दरोग बियो हाली राहक खेत हाल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए नानक लिखे मंगे औद जनेता जाए। महला पहला

आशीष बोहल दुनिया सगल दरोग, नानक नजरी कर्म हुए जावे सगल बेजोग। पौड़ी मनमुख मोह गुबार है दूजे भाई बोले, दूजे भाई सदा दुख है नित नीर विरोले। गुरमुख नाम तिहाइए मथ तत कडोले, अंतर परगास घट चानना हर लद्दा टोले। आपे भरम भुलाए दा।

सुई धागा गंढै, माहो पख क्यों चलै नाही, घड़ी मोहत किच हंडै, सच पुराणा हुवै नाही। सीता कदे ना पाटै, नानक साहिब सचो सच्चा, तिचर जापी जापै। महला पहला। सच की काती सच संसार, घाड़त तिसकी अपर अपार, सब दे साण रखाई लाए, गुण की ठेकै विच समाए। तिस दा कुठा हुवै सेख, लोहू लब निकथा वेख, होए हलाल लगै हक जाए, नानक दर दीदार समाए। महला पहला।

मत सिरिया वै भार पौड़ी। सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच ते आयन से सच्चे जिन हार खर्च धन पल्ले। भगत सोहन गुण गावदे गुरमत अचल्लै।

भुलाए सोई पौड़ी, त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दातार निचल इहु धन, सास सास आराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन, रव रहया सरबत राव रहया सरबत नानक बल जाई। श्लोक महला पहला। सारवर हंस

0: जोड़ के इसी तरह गुरबाणी कीर्तन गुरु साधियां सीसा प्राप्त करिए। सो सात संघ जी मोइयां फुलां गलतियां लिखिमा। सो अगला प्रम आप जी सतर साहब पासों सरवण करो जी। प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

प्यारी सात संगत जी आज असी सारे चार साहबजादों की याद में जुड़ बैठे हैं। साढ़े भी सारे का मन तो करता कि आप उस धरती से नतमस्तक होन जाइए। दसम पातशाह के चरणों नाल अपनी लिव जोड़िए, माता गुजरी जी के चरण परसीए, वड्डे साहबजादियां ने किस तरह चमकौर की गढ़ी में शहीदी पाई होगी, इतिहासकारा ने बहुत अच्छी तरह बयान किया, कविया ने भी, और मेरे बुजुर्ग प्रोफेसर रणजीत सिंह जी और नीला साहब बैठे ने सारे गुणी जानो तुसी कीर्तनिया के उत्ते सतगुर ने सानू गुरबाणी गायन का आदेश किया, उपदेश किया। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, असी बाणी नू प्रधान रख के जो भी गल करनी है उस प्रथाएं ही

मिल पीवो भाई। कई बारी मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आ जो बाहरी साडा भेख है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सानू नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोल दी है, कपाट खोल दी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे हैं, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जाते हैं आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करते हैं। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके होंदी है। सो उस रंग तक पहुंचद्या नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विचों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तो अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है, और किवें करना है, बाणी दीआं पैड़ां बाणी दे स्टेप्स दे उत्ते चल के। नानक अमृत मने माहे, बाहरी रिचुअल करद्या करद्या कई बारी असीं मन की खेड नूं भुल जांदे हां, पर गुरु पातशाह